रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आके

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मोहब्बत हो।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
3: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
5: Sorry, me.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

Assalamu alaikum, waddab, and a warm welcome to all of you. दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM और लो हाजिर है और जेसियस लेकर शो व्हाट्सएप.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: जी हाँ दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। व्हाट्सएप याद रखिए, अपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज लॉग ऑन www.radiochunar.com। मैं हूं जॉग्स श्रेहट।

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, हंस मुझे काली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Mr. Zeus.
1: Kon aaya.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: This frequency har dil ki dhadkan Radio Chennai 90.4 FM enjoy kar rahe hain mastar show. What's up, main hoon Jaxis, our brother. Aaj ka weather.
2: Radio Chennai. Weather update.
3: Ye aaj ka kaisa hoga mausam? Buske awesome batayenge aapko. आज के मौसम का हाल है बवाल, क्योंकि कल से एक डिग्री ज्यादा रहेगा. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस. इट्स सनी फॉर टुडे. पूरा दिन सूरज चमकेगा, दैट मींस गर्मी की जो तपिश है वो हाई रहने वाली है. अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स है वीक पर, ह्यूमिडिटी 59%, विंड स्पीड 3 किलोमीटर, विजिबिलिटी 8 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 6 बजे, आज का सनसेट होगा 7:08 पर.
2: वेदर अपडेट.
3: रेडियो चरण 90.4 FM, हर दिल की धड़कन, मेरी जान से रिएक्ट.

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रीजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल रहता है हम आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आज बात करते हैं एक ऑरेंज स्नेक की। यहाँ ऑरेंज रंग का स्नेक स्पॉट किया गया वेस्टर्न गार्ड्स में। मैं बात कर रहा हूँ एक वायरल वीडियो की जहाँ पर ऑरेंज कलर की वंदे भारत गुजरती हुई दिखाई थ्रू द लश ग्रीन वेस्टर्न गार्ड्स। यहाँ लश माउंटेन लैंडस्केप बेंगलुरु रूट और जब वंदे भारत वहां से गुजरी अपना स्ट्राइकिंग ऑरेंज एंड व्हाइट कोचेस लेकर तो एक अलग ही व्यू, एक अलग ही लैंडस्केप, एक अलग ही नजारा जो हो चुका है वायरल। यहाँ एक ऑरेंज एंड व्हाइट स्नेक जिसने लोगों का दिल जीत लिया और इससे पता चलता है इंडिया का रूट कनेक्टिविटी और इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी सरल और सबसे अलग है। रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन वायरल था व्हाट्सएप पर आ चुका है। मैं हूँ जॉक्स, धड़का तेरा।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन.
4: और दिल की धड़कन रेडियो चिटार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे.
5: ऐ मेरे शोर साथ.
4: आज का कोट कहता है द ओशन टेक्स केयर ऑफ ईच वेव अंटिल इट रीचेस द शोर.
5: रास्ता बनाने दे.
4: रेडियो चिटार पर मजेदार शो व्हाट्सअप मैं हूँ जॉक्स्यूस सिटैक्ट धड़काते रहो.
5: रास्ता बनाने से रास्ता

0: Kom här, ja.
1: Dios. Dios. Dios.

0: Dios.
1: और दिल के धड़कन रेडिएशन ऑन 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में के सफर में मैं हूं आपका हम सफर चक ज्यूस। यहाँ शो का हिस्सा बनने के लिए अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 9999904 इज द नंबर। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कॉल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज बस ये है कि आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जुड़ जाए। जोड़िए अपने दिल के तार क्योंकि आपका प्यार बनाता है रेडियो चनार को सही मेरे यार। और दिल की धड़कन को धड़काने के लिए आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा जॉक ज्यूस। आप सर्च कर सकते हैं मेरी आईडी इस नाम से JOCKXEUS। देखिए धरती के बारे में तो हम बात करते हैं लेकिन आपने अक्सर इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होगी जहां पर ये बताया जाता है दैट्स व्हाई साइंटिस्ट आर नॉट एक्सप्लोरिंग द ओशन फुली। और कहीं हद तक ये सच भी है क्योंकि पूरी तरह से क्या हमने तो धरती पर भी ओशन को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि जैसे जैसे इंसान पानी के अंदर जाता है वाटर प्रेशर इस तरह से इंक्रीज होता है कि पूरी सबमरीन भी जो पानी के अंदर गोताखोरी या डुबकी लगाकर चलने के लिए बनी है वो भी गायब हो जाती है सेकेंड्स में। ये पानी बड़ी जालिम चीज है और इस पानी के अंदर इन समंदरों के अंदर न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जो हद से ज्यादा डीप है जिन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है और इन्हीं ट्रेंचेस के बारे में आज बात करेंगे मैरीन ट्रेंचेस की। मरीन ट्रेंचेस और ऐसी डीप जगह ऐसी डीप केव्स जहां पर हम आज आपको लेकर जाने वाले हैं। व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक मरीन ट्रेंचेस। आप भी हमारे साथ जुड़े अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए 9899904 इज द नंबर। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन में हूं जॉक्सी डायरेक्ट दिल का दे रहा

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: juice.
1: कौन आया?
2: जस।
3: और दिल की धड़कन धड़का रहे हैं आप? मैं हूं जॉग ज्यूस, ये है रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Dios.
1: Más tarde, WhatsApp por WhatsApp, Juga, Sabane, Sadaf, or Sadaf, Lekti, Sir. Bataye, jaldi se ki kya hai Marine Trench ki kahani. Aapki awaaz mein sunne se maza aata hai. Thank you so much. And yes, we are obviously talking about the topic today. Aaj ka topic hai Marine Trench.
0: Dios.
1: God bless you and हमारे साथ आरिफ जुड़े हैं लिखते हैं सर ड्राइव कर रहा हूँ और गानों की कलेक्शन बहुत ही प्यारी है रेडियो चनार कभी डिसअपॉइंट नहीं करता थैंक यू सो मच आरिफ हमसे जुड़ने के लिए और इस प्यार से प्यार बांटने के लिए बात हो रही है मरीन ट्रेंचेस की और वही अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में क्रैश होते हैं और वही अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रैश होने की बताएं तो हेवी प्लेट घुस जाता है लाइट प्लेट के नीचे जिससे वी शेप वैलीज बन जाती है डीप स्टीप गॉर्ज बन जाते हैं जहां पर ये ट्रेंचेस क्रिएट होते हैं और दुनिया में मेजर ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में क्लोजली लिंक्ड एक्टिव वोल्केनो एंड अर्थक्वेक जोन जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है वहां पर मौजूद हैं जी हाँ मेजर 50 मेजर ओशन ट्रेंच वर्ल्ड वाइड जो रफली कवर करते हैं 0.5% ऑफ टोटल ओशन फ्लो अब अगर हम टिपिकली देखें तो डेप्थ जो है 3 to 4 kilometers देखी जाती है सराउंडिंग द ओशन फ्लोर और वही अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें दैट्स मरियाना ट्रेंच अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना तो आपको बता दूं इट इज 36,000 फीट बिलो द सी लेवल और इसका जो खतरनाक हिस्सा है जिसे चैलेंजर्स डीप कहा जाता है दैट्स द मोस्ट एंड द एक्सट्रीम डीपेस्ट पार्ट इन द सी जी हाँ जहां पर वाटर प्रेशर अगर हम देखें इन ट्रेंचेस में तो इट एक्सीड्स 1000 टाइम्स देन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सरफेस कहा जाता है कि जब खोजकर्ताओं ने खोज की इस मरियाना ट्रेंच की चैलेंजर्स डीप की तो इस सिंपल तरीके से खोज करते थे कि रस्सी डाल दी ओशन फ्लोर पर देखा एक लंबी सी रस्सी जो हम सोच भी नहीं सकते लाइक किलोमीटर्स लंबी रस्सी और जैसे ही उन्होंने इस चैलेंजर्स डीप को आंकने की कोशिश की तो कितने सारे किलोमीटर्स की रस्सी जो है डालते गए और इस फिर भी इस जगह का जो अंदाज़ा है नहीं लगा पाया मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम इस चैलेंज डीप की जो एक्चुअल डेप्थ है उसके बारे में जान पाए एक बार फिर से बता दूं 36,000 प्लस फीट डीप और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर प्रेशर जो है कितना हाई होगा रेडियो चनार 90.4 FM अगर आपके दिल को ये गजल छू रही है और इस गजल के बोल आपके दिल को चीर कर आगे बढ़ते हैं जी हाँ कानों में रस घोलते हैं तो हमें जरूर बताएं अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए मैं हूँ जॉक्स और रफ्तार रफ्तार आप भी हमारे साथ जुड़िए रेडियो चनार व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनिए 8899 0090

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश आई फील गुड एक ऐसा शो दैट्स टोटली डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक जरा सा इंतजार देते रहो प्यार हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे हमदम मेरे यार मैं हूं जॉक्स सिलेक्ट धड़काते रहो

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। Tech Talks with RJ Zeus.
3: Bollywood News.
4: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

देखिए माहौल बदल गया है क्योंकि संसद बदल गई है, गद्दी बदल गई है और हम आ चुके हैं 91.4 रेडियो चुनार प्रागा सो चुका है शो चुनार बीच का उत्पल ऑन वाइव एंड ट्राई बी।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Just on repeat. Beats on repeat show Chunar Beats. आप enjoy कर रहे हो नहीं on radio Chunar 91.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक है, fun है, entertainment है, और क्या चाहिए, बस मुझे तो चाहिए मेरी पूरी vibe और try. And I'm sure कि हमेशा की तरह आज भी आप मेरे साथ ढेर सारी बातें करेंगे, you know, हो जाता है, क्योंकि वो होता है ना कि सुबह सुबह जब आप आओ स्टूडियो में, सो इट्स लाइक वाओ, मज़ा आएगा आज, इट्स सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, इट साउंड्स लाइक वाओ वाओ वाओ. सो वाओ के साथ ही सफ़र जब स्टार्ट होता है ना, आई एम सो एक्साइटेड कि ये जानने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो और इस सफ़र में आज क्या कुछ चटपटा होने वाला है. सो वो चटपटी बातें जो हैं वो मैं सुनने के लिए हूँ तैयार बेकरार. तो आपके जो है मन में, जो भी दिमाग में बातें हैं, यानी कि आपकी जो राय है, वो आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं और मैं पहुँचाऊँ.

होगी वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चिनार की आवाज। तो ये ख्वाब झूठे मोटे हम तो नहीं दिखाते, वादा करते निभाते आई हूं मैं, और वादे को निभाने और बैक टू बैक सॉन्ग्स आप तक पहुंचाते हैं।

देखिए हवाओं में ये चीज भी चल रही है कि आप हैं हम हैं मौका है बस दूर है कहाँ जाने का हुजूर. बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए ऑन योर हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: देखिए, गड्डियां ऊंचिया रखिया या छोटिया रखिया, बट यही है कि मैं बता दूं कि अभी आप तक है कि आप अपनी गड्डी को इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि सही चलाएंगे तो सही होगा। अब करंटली ऑपरेशनल है 2-way ट्रैफिक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, तो आराम से जा सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ सकते जा सकते हैं, बट बी केयरफुल, बी कॉशियस, क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे। और उसके अलावा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गलत जगह पे ओवरटेक ना करिए, और जो ड्राइविंग एसओपीस हमारे लिए उन्हें फॉलो कीजिए, और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और मुझ तक कुछ पहुंचाना चाहते 8899904904 पर कॉल देख व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव आरवीज का हिस्सा बन जाइए।
1: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

नहीं करती। अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: तो चुनाव बीच और बात हो रही है आज विमेन ऑफ कश्मीर के बारे में, जो इवॉल्विंग रोल है कश्मीरी विमेन का, या फिर अगर हम देखें विमेन एम्पावरमेंट पे कि पिछले कुछ टाइम से कितना ज़्यादा काम किया गया है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ चुकी है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नई कश्मीर में जो हमारी विमेन हैं, उनका रोल क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, और कैसे हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं. तो कौन सी सी मिसाल है अभी हमारे पास जिन्होंने बदला है कश्मीर को, वो सारी औरतें, वो सारी ख्वातीन जिनका काम इतना कमाल का था, इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता भी खोला और वो मिसाल भी हर एक के लिए बन गई. वी आर टॉकिंग अबाउट वेमेन ऑफ कश्मीर. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी हमें सुन रहे हैं, आपका क्या काम है, रोल है, आपका एक्सपीरियंस, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं कश्मीरी वेमेन के लिए, क्या कोई बात आपके दिल से आ रही है, आवाज़ मुझे बताइए और हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चिनार की आवाज़. तो जल्दी से शो का ऐसा बन जाइए, शो चिनार बीच पे वी आर टॉकिंग अबाउट वेमेन ऑफ कश्मीर. तो जल्दी से शो का ऐसा बनकर आप भी अपने राय हम तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हो ऑल इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चिनार 90.4 FM.

देखिए, इज्जत तो है हमारी आपके साथ और आपकी हमारे साथ, और ये है कि पता तो सब चल जाता है जब भी हमारे माइंड में कोई इरादा बन जाता है। तो यहाँ पे कोई ताने नहीं मार रहा है, आपसे बातें हम किए जा रहे हैं और आप भी हमसे बातें करे जा रहे हैं। सो बात हो रही है विमेन ऑफ कश्मीर के बारे में, चाहे बड़ा वो हो कि लोग ताने भी मार ले कि आपको ये नहीं कर सकते, ये रोल आपके लिए नहीं, बट कश्मीरी विमेन दे आर लाइक अनस्टॉपेबल, दे आर लाइक कि हम करेंगे और चाहे लोग कुछ भी बोले, ताने मारे, कुछ भी हो, पर हमने करना है। और वो रास्ता उन्होंने खोला है वाकई लड़कियों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी है। वेमेन एम्पावरमेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमारे पास इतनी सारी मिसालें हैं। हम बात करते हैं अभी, हम मास्टर शेफ ने हमने देखा कि कश्मीरी वेमेन दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर। हम देख रहे हैं अभी वेमेन आर मोर इन बिजनेस, वो अपना कुछ काम करते हैं जहाँ पर सिर्फ हम पहले लड़कों को देखते थे, अभी लड़कियाँ भी हैं। सो दे आर शाइनिंग, दे आर अमेजिंग, दे आर वंडरफुल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेमेन ऑफ कश्मीर, और आपके आप से कौन सी ऐसी खवातीन है आपकी नज़र में जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, आपको लगता है दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर लाइफ। 8899-04904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और शो चिनार बीट्स का हिस्सा बन सकते हैं।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए अभी तो मुझे कहीं भी वाजवान खाने के लिए नहीं जाना है, बट थोड़ा सी पेट पूजा हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी में। लाल के लिए मैं तो जा रही हूँ और टाइम आ गया टाटा बाय बाय करने का। और असरा आई आपसे 2 बजे, तो थोड़ा सा टाइम है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिए, कल 12 बजे मुलाकात होगी। तब तक आप सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की।

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: असरा हंगामा होगा तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बात आई है तो शो शुरू हो चुका है। हंगामा जहाँ होता है भरपूर ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बजेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। देखिए मैं तो देरी नहीं कर रही, बराबर 2 से 4 रेडियो चैनल

0: DJ Asra ke saath.
1: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
2: बस

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
2: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है।
1: व्हाट अबाउट यू?
0: हाय
1: लिख के दूं क्या?

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा तो है, ड्रामा भी है, और एकदम जो मिड वीक, अभी तो मिड वीक भी नहीं हुआ, दूसरा ही दिन है हफ्ते का, बट इतनी याद आ रही है ना संडे की, क्या बताऊँ, बट क्या कर सकते हैं, और वेट करना पड़ेगा। अब सैटरडे नाइट का वेट करते करते कहीं कुछ हो ना चाहे, बट देखिए अभी तब तक के लिए जो भी दिन मिलते हैं अच्छे से जीते हैं, और आप तक इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट का डोज भर भर के पहुँचाते हैं। और अभी बात करते हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, क्या है आज की मंडे का सवाल, और लाजवाब जो भी तरीके हमारे सामने आते हैं या जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, एक्स है, यूट्यूब है, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या रीपोस्ट हो रहा है, किस पे लिप सिंकिंग हो रही है, डांस रील्स ट्रांजिशंस बन रहे हैं। और अभी की बात करें तो एपी ढिल्लो, जो कि एक पंजाबी पॉप कल्चर म्यूज़िक का हिस्सा है, और उनका कुछ टाइम से कोई गाना रिलीज नहीं हुआ है आज सच, जितना फ्रीक्वेंटली वो पहले रिलीज करते थे, और उनके एक फ़ैन ने बोला है कि 4 साल पहले वाला वी नीड अ कमबैक। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कोई भी क्रिएटर कुछ टाइम के लिए शायद डिटॉक्स करे या अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ पे फोकस करे, तो सारी की सारी ऑडियंस ये बोलने लगती है कमेंट सेक्शन में कि भाई कमबैक होना चाहिए। बट क्या ज़रूरी है कमबैक? बट आर्टिस्ट की बात करें तो हर कोई वेट कर रहा होता है किसी न किसी अपने फेवरेट आर्टिस्ट के जो आर्ट पीसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो रिलीज़ होने के लिए। आप देखिए एक भी ढिल्लों की बात हुई है तो एकदम उन्हीं का ट्रैक प्ले करेंगे बॉस। And AP Dillo is known for classy, jazzy and Punjabi tones and slow but very, you know, very बहुत ही खूबसूरत tracks होते हैं, but बहुत party vibe होते हैं, but ऐसा होता है कि slow party vibes। मैं वास्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार, groove with us। मैं वास्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक जी, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा। जी हाँ, हंगामा है, बट अपडेट्स भी जरूरी है। और अभी टाइम है रेलवे अपडेट का, और आज की अपडेट कुछ खास नहीं है, बस यही है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आपका वो ऑलमोस्ट कॉच द ट्रेन वाला मोमेंट ना हो। इसके अलावा जो भी लोकल सर्विसेज हैं, दे आर एज पर द शेड्यूल, जो समर टाइम टेबल है, एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑल्सो। ऑफलाइन किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेशन पर बिल बोर्ड्स लगे हैं, यू कैन चेक इट आउट, या के अलावा ऑनलाइन आप रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से आप अवेल कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन डिले है, कौन सी शेड्यूल नहीं है या है, कब कहां, कौन सी क्या पहुंच रही है, कौन सी ट्रेन, वो सब कुछ आपको रेल वन पे पता चलेगा। और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंडियन रेलवे के बारे में। पंजाबी आ गए हो रेडियो चिनार। देखिए पंजाबी ट्रैक्स में जो एनर्जी है, आफ्टरनून में खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना, उससे बचने के लिए पंजाबी ट्रैक्स आर द मस्त चॉइस।

एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स एंड दिस इज द ओजी जैजी बी नाग ट्रैक जिसे असद रिमिक्स ने अपने तरीके से अपनी आर्टिस्टिक तरीके से रिमिक्स किया है. तो चलिए सुनते हैं और शुरू करते हैं. मैं वसा यूं का युवा बसाई

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू द ऑरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। शो चल रहा है हंगामा चाहे ड्रामा। देखिए ड्रामा के अलावा हम काम की बात भी करते हैं, सही में करते हैं। और अभी हम कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या, बट अभी वक्त है कि वन मिनट फैक्ट के, एक मिनट में एक ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, मौसम के बारे में, हर चीज़ के बारे में कभी ना कभी आप खुद की जो नॉलेज है वो एनहांस करते हैं। और आज की बात है आँखों के बारे में। आँखों के बारे में ये बातें कि लोग कहते हैं ना कि मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया और लव एट फर्स्ट साइट, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ नहीं है। यू जस्ट लुक एट अ पर्सन, कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं एक इंसान से, और वो फिजिकली अट्रैक्ट होना सिर्फ और सिर्फ इन्फैटुएशन है, वो प्यार नहीं है। आई एम सो सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, बट ये सच है कि एक पहली नज़र में कोई प्यार नहीं होता। और कहते हैं ना कि वो बस आंखों ही आंखों में वो बात हो गई थी और एक पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया। आज से अगर आपको कोई भी दोस्त ये बोले आए कि पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया, बोलना कि भाई ये प्यार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि यू आर अट्रैक्टेड टू द पर्सन, बट प्यार नहीं है।

देखिए प्यार की बात हो रही है तो इंटरनेट को और मुझे पर्सनली भी अजय देवगन की कोरियोग्राफी एंड लाइक डांसिंग से काफी ज्यादा प्यार है, बिकॉज वो डांस के अलावा सब कुछ करते हैं और बस मजा आता है देखने में. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो 90.4 FM. मैं बस यूं कही और यूं वापस आए.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ओके और ओके तो हमारा टॉपिक भी है, क्योंकि मैंने कहा था कुछ ट्रैक्स के बाद आपसे बताएंगे कि आपको बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है। और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो

हर दूसरी या तीसरी रील पे आपको कोई ना कोई पॉडकास्ट तो देखने को मिल ही जाएगा, कोई ना कोई होस्ट है और कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई नया गेस्ट कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है, हर कोई कुछ कहना चाहता है और सब अपनी वीडियो कॉल की चैट को बस पॉडकास्ट बना रहे हैं और कुछ कुछ अच्छे पॉडकास्ट भी हैं। अब डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, बल्कि अभी तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है पॉडकास्ट की इन द मार्केट, उस हिसाब से हमें समझ जाना चाहिए टू फिल्टर आउट कि कौन सा पॉडकास्ट देखने के लायक है और कौन सा नहीं है। उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, क्या क्रिएटर्स हैं, मिसकंसेप्शंस क्या है और इतनी पॉपुलैरिटी कब से और क्यों बढ़ गई और लोग पॉडकास्ट देखना क्यों पसंद कर रहे हैं। और फिर भी अभी की बात करें तो अटेंशन स्पैन लोगों का कम है, तो पॉडकास्ट तो पूरा देखते नहीं हैं बट रील्स जो उसमें कट आउट होती हैं और जो आधी बात कट आउट करके दिखाई जाती है पब्लिक को, फिर लोग भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों की तरफ काफ़ी, देखिए हमें भी मज़ा आता है ना गॉसिप में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पॉडकास्ट बूम के बारे में कि क्या चल रहा है, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं पॉडकास्ट और अभी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: You ain't heard something like this before.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटी

टीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी।

चोरी तो बराबर चार तक आपके साथ यही है. आप अपने विचार भेजिए 8899-0494 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम. और जैसे कि आज हम द पॉडकास्ट बूम के बारे में बात करेंगे, किसी ना किसी को, हर किसी को कुछ ना कुछ तो कहना ही है. पॉडकास्ट यहाँ देखो, पॉडकास्ट वहाँ देखो, पॉडकास्ट. बट ये बात है कि हाउ कैन वी फिल्टर आउट कि कौन सा सही पॉडकास्ट है, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए. बिकॉज वॉट वी कंज्यूम वी बिकम दैट. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. मैं बस यूं कही और यूं वापस आए.

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM और शुरू हो चुका है सेगमेंट गेम ऑन, जहां मिलता है आपको लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के फैक्ट जो कहीं और नहीं मिलते। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। कुछ ही ट्रैक से बात करेंगे कि आज की अपडेट क्या है। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स

आ सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

हाई मैं हूँ अश्रा और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। कल फिर से मिलूंगी बराबर 2 बजे और कल एक स्पेशल शो है बिकॉज इट्स वेंसडे एंड इट्स अबाउट रेडियो गर्ल्स। जाते जाते बस यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए एंड मेक श्योर दैट यू मेक क्रेजी मेमोरीज बिकॉज दैट इज वॉट यू नो स्टेज विद यू। मैं हूँ अस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो चिनार और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस इतना ही कि अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Yes guys, you are tuned in the hottest frequency 90.4 FM Radio Chanar. हर दिल की धड़कन शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ. दिल की बात हम करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Lot of entertainment and infotainment lined up for you. Ramaya Vastavai, enjoy किया आपने ये track. Lot more music coming your way. Stay tuned to the hottest frequency. आज साहिल हूँ मैं, लौट के आऊंगा.
1: जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते.
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे.
1: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर.
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे,
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harche Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM.

ऑल राइट गाइज, इसी ट्रैक के साथ जी हाँ आज के इस सफ़र को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि एंजॉय कर रहे हैं आप हमारा ये सफ़र रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, म्यूज़िक सुनते रहिएगा। फ़िलहाल दिल की बात साहिल के साथ इस शो का आखिरी नगमा आप तक पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए बैक टू बैक म्यूज़िक एंड देन यू कैन लिसन आवर इवनिंग शो सुहानी शाम। This is Sahil Muzaffar saying you bye bye, take care, ma salama.

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: ओ मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंग लेना। मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Jerry B. Chinar Beats with Harshit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM. मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1807178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है,
1: व्हाट्सएप पे
2: तभी व्हाट्सएप पे वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो टनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: कहानी शाम।
1: दबी यादें महक जाएं
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार
0: पांच
1: लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और समार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।